सौम्य तेजस्विनी पुस्तक डॉक्टर गिरीश भाई ठाकर द्वारा लिखित सोमनाथ की पृष्ठभूमि में ज्या वार्ताओ ए ऐतिहासिक घटनाओं स्वरूपे समायेली छे तेने दर्शावे छे। अने तेना अंशो थकी हूँ आरजे एआर रेडियो पालनपुर पर थी तमने संभळावी रह्यो छुं आ पुस्तकना वाचिकमने। याज्ञ वल्क्य प्रथम प्रकरण। ब्रह्मतेज थी जेनु ललाट प्रकाशमान छे, मस्तक मां रहेल ज्ञान नो प्रकाश अंगे अंगथी प्रस्फुटित थई रह्यो छे। माथे काली भम्मर जटा जाने गंगाजी ने पोतानामां समावी लेवा सिद्ध होय एवा भगवान शंकर नी जटा फक्त चंद्रबिंब रहित शोभी रही छे, जेनो शब्दे शब्द मंत्र बनी जाए एवं ब्रह्म वर्चस्व नक्षीक अंगों मांथी प्रकट थई रह्यु छे। अने एवा ज्ञानोपासक तपस्वी युवान गुरुश्री शाकल्यना आश्रम मां विद्योपासनामां तन्मय छे। अने एक दिवसे मंगल प्रभाते गुरुनो आदेश संभळाय छे, याज्ञवल्क्य आजे तारे मंत्राक्षत पुष्पांजलि वगैरे लईने राजप्रसाद जवानुं छे। केम गुरुजी, कई विशेष छे? अरे वत्स, तू नहीं जानतो आपणा राजाजी दररोज प्रभाते आपणा एक शिष्य ने आमंत्रे छे। राजाजी गुणग्राही ज्ञान पिपासु लागे छे? ना वत्स, साव एम तो नथी। पण जी गुरुजी, पण शु? पण आपणो ज्ञानी शिष्य प्रभाते राजा ने आशीर्वाद आपवा जाय अने तेना आशीर्वाद

90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। मित्रों, जिंदगी में हमेशा आपणे सांभळता आवीए छीए कि कोई पण कार्य एकला हाथे सफल पार थतुं नथी, एटले कि कोईनो साथ अथवा टेको होय ज छे। परंतु हमेशा एवी व्याख्या करी शकाय कि आजूबाजू घणा बधा लोको होवा छतां

90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। मित्रों, जिंदगी में हमेशा आपणे सांभळता आवीए छीए के कोई पण कार्य एकला हाथे सफल पार थतुं नथी, एटले के कोई नो साथ अथवा टेको होय ज छे। परंतु हमेशा एवी व्याख्या करी शकाय के आजूबाजू घणा बधा लोको होवा छतां पण एवा कया व्यक्तिने आपणे पसंद करवो जोईए के ए आपणी पासे हमेशा आपणो आधार स्तंभ बनी रहे અને આપણે આમ છાતી ઠોકીને જયારે સફળતા પ્રાપ્ત કરીએ ને ત્યારે કહી શકીએ કે એ જ મારી પાસે મારી પડખે ઉભો રહે છે અથવા ઉભી

0: राइट ऑल राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, बड़ा फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर
1: समझा करो डालिंग, आज बहुत काम है।
0: भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: नॉट लिस्निंग टू
1: यू, कुछ दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा।
0: नॉट लिस्निंग,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: ओके, आई एम नॉट विद
1: यू। इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके, दैट्स इट।
2: યાદ રાખજો, આપની ફરમાઈશ અને પ્રતિભાવ સંદેશ સ્વરૂપે, ઓડિયો અને ટેક્સ્ટ સ્વરૂપે અમારા વોટ્સએપ નંબર 9512966888 પર મોકલી આપો. યાદ રાખજો, જો ગીત 1965 પહેલાના હશે તો અમને સરળતા રહેશે. બનાસકાંઠા ડિસ્ટ્રિક્ટ કેળવણી મંડળ સંચાલિત પાલનપુરનો અવાજ અને આપણા સમુદાયનું એકમાત્ર સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન એટલે રેડિયો પાલનપુર.

पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन.